स्वामी हर आपे बोल बुलावै, हर आपे पंच तत् बिस्थारा, बिच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। हर आपे पंच तत् बिस्थारा, बिच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे। जे को निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी साहिब हम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। सोचे सोच न हो गई ये सोचे लाख बार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना।

0: रूप केती दात जाने कौन कुवत
1: कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ
0: कुदरत कवन कहा विचार बारिया न जामा एक बार
1: जो तुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
0: असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
1: असंख सूर मोह पख सार असंख मोहन लिबलाए तार
0: उदरत कवन कहा विचार उबारिया न जामा एक बार
1: जो तुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
0: असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम कोर
1: असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे
0: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कुड़े फेराहे
1: असंख मलेश मल पखाहे असंख निंदक सी

0: सलामत निरंकार
1: असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो
0: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
1: अखरी लेखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान
0: जिन्हें लिखे तिसे नाहे जे फरमाए तब ते पाहे
1: जेता कीता तेता नाव बैन नावे नाही को थाओ
0: कुदरत कबड़ कहा विचार बारे न जावा एक बार
1: जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
0: पर यह हाथ पैर तन देहे पानी तो तय उतरस खेहे
1: भूत पलीती कपड़ होए जे साबुन लइए ओ तोए
0: पर यह मत पापा के संग ओ तो पहना वे कह रंग
1: पुन्नी पापी आखण नाही कर करना लिख ले।

0: पांड मंडल वर पांड जे को कथे तांत ना अंत
1: जिथे लो लो आकार जेब जेब हुकम तेवे तेव कार
0: देखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार
1: जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत बेद हथियार।

0: कलंकन बैनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रुजेश्वरं परम रूपे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: परमी अपोगी अपुक्ते नमो जोग जगेश्वरं परम

सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सब्दा

0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अख जे अप जे समस्तंग प्रसिजे
1: पालंग स्वरूपे को कर्मंग परनासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट शांत वाय प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग

परम रूपनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप अमीक अनुस्त एक पुरख अवधूत।

0: रंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो भूत है
1: के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के चलंग नांग है के मितो अपंग है मन मान प्रणाम गुण गण मदाम हर पर गंज हर नर पर पंज
0: हन
1: पवनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम जल थल मंड दिस विच भंड जल थल महंत दिस विच बेअंत ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल अंचंज गात अंदरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार करुणाले है हर काले है खलखंडन है मैं मंडन है
0: परमेश्वर है कल कारण है सर्वारण है
1: जिनके तरने जग के करना है मन माने है जग जाने है
0: सर्वंकर है सर्वपस्य है सर्वनाश्य है
1: करुणा कर है बेसंबर है सुरभेश्वर है जगतेश्वर है
0: मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है
1: अजप अजप थप थप कीर्तन।

0: नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजल नामे समस्तुल निवासे
1: कर्मंग
0: सदा सचदानंद सतंग परनासी करिमन कुलिंद।

0: ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा
1: सकल काल का किया तमाशा
0: जमन काल जोगी सब की यो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो
1: जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: जमन काल सब जगत बनायो देव दयान जशन उपजायो
1: अनंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार तुसी को हमारी सब

0: न पावत वेदा।
1: ताको कृपान अनुमानत महामूढ़ कछु भेद न जानत।
0: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेवत।
1: आपे अपनी बुधै जति वर्णत भिन्न भिन्न तोहै तेती। एक रूप अनूप स्वरूप रंग प्यो राव गई भूपा। कौ भूल राजा वह बैठा कौ सिमट प्यो संकरी कैठा। अव रक्षा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो। तब शरणी परेतन के दुष्ट दुख तो है मरे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निपने आए
0: हैं। सब काला दुष्ट तत्काला।
1: कृपा दुष्ट संजाय न हर हो ताके ताप तनक मोहर हो।
0: सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई।
1: एक बार जिन तो मैं संभारा

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जस जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को सोखा। ब्रह्म ज्ञानी क्या दृश्य समान जैसे राय रंग कुला के तुल पवान। ब्रह्म ज्ञान के तीर जी के जो वसुद्धा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी के गुनाओ नान जो पाव का सह सुबाहु। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश जैसे तार ऊपर काश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च उच्चा मन अपने सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नान जिन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सल गिरी ना तम रस। ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया। ब्रह्म ज्ञानी कशपुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास। ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी के नाई तंदा। ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के सफला। ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सकल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के रंग। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत। ब्रह्म ज्ञानी ओम बद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता। ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता। ब्रह्म ज्ञानी का अचिंत। ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप। ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माह। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अधाखर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता। ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर आत। ब्रह्म

राजमान सो नरपति सो आन जो जाने में जो गुणवान सो तुष्टा का जनते आप सो करुंत कहावे जन्म भरे भोजन फरमावे तन भूमिका जो करे कुमान सो मूर्खन दा ज्ञान कर कृपा सकेर दे गरीब सावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे धन मंदा कर गरबावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर मान कुबर करे आस पाल पितरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हो जाए समान किसी ने बदे आवंकारी धर्म राज करे कुवारी गुरु प्रसाद जा कमड़े मान सो जन नानक दर की भगवान कोट कर्म करे तारे सरम पावे सगले वीर तारे अनंत तपस्या करे अंकार नरक से रुख फिर अवतार अनंत जतन करे आत्म मित्र वे हर दर कैसे गवे आपस को जो पला कहावे तेसे पला इन अपने आवे सर्व गिरे जा का मन हो एक कहो नानक ता कि निर्मोस हो जब लोग जाने मिटे को चाहे तब उसको सुखना ही कोई जावे जाने में फिर करता तब लोग अर्जुन में फिरता जब तारे कुबैरी मी तारो ने चलना ही चे जब लोग मोह मोह समाए तब लोग धर्म देश जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नाम को छूटे सहस कटील हां कूड़ दावे तृप्त ने आवे माया पाछे पावे न भोग भी क्या के करे ना तृप्त आवे कब कमरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मर्थ फिरते सब काजे नाम रंग सब रूप भागी किसे बराव तो करण क्राम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाव करण क्राम करण यार इसके याद का विचार जैसे दिश के जैसा हो आपे आप रसोए जो किसी किनु सपने राम के सब ते दूर सब के संग बुझे देखे कर विवे का पे अनेक मरण बिन से अवन जाए नाम सदी रह समाय आप जैसे समझे आप रचे सब के साथ आप किनु अपने विस्तार सब कस सुखाव करने हार उसे भिन्न को सोए दंत अंतर कसोए अपने सलताव करने हार कोत कर रंग पार मान में अपना अपने माए नानक किमित कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन मुखे आने सच सत सत सब किन्ना कुण मधे किन विरले चीना भला भला भला तेरा रूप है सुंदर है पार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी कड़क सुने सर मुखे आने पुत्र पुत्र पुत्र

प्रभु के रंग सदा सर से संग सह सुहाय सोय करणे हर पुछाने सोय प्रभु का किया जन्म भी लगाना जैसा सा तैसा दिष्टान जिससे उजय तिस्माय सुमाय।

गणन हर गोपाल सर्वज्ञा पे प्रपाल सगल चिंता मनमाय तिस्ते विरथा कोई नाय। हिरे मन मेरे सदार जाप अपनासी प्रभु आपे आप अपन किया कुछ नए जैसो प्राणी लोचे कोय तिस बिना त्रे किस काम जब नानक राय करे करणाम। रूपवान तो नाही मोह है प्रभु की जो सगल कर सो है धनवंता क्या को कर बै जन सब कुछ तिस कर दिया दर्भ है।

अवतार या पे मनु कारी शव सुर सासन भोगता सुर तो साधा जसन था पूजन हर को सत सव नानक सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण कराउ तिन मूल पछाने जा कर दे विश्वास प्रावे तत ज्ञान तिस मन प्रगटाए भय तिन निरभउ विसाना जिस देव जा तिस मन समान बस तुम ले बस कटाए ताको पे न कह ना जाए बूझे बुझन हर विवेक नारायण मिले नानक के ठाकुर का सेवका के कारी ठाकुर का सेवक सदा बुझारी ठाकुर के सेवक मन भरती ठाकुर के सेवक निर्मरी ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कराऊ सेवक को प्रभु पालन हार सेवक की राख निरंकार सो सेवक जी दे प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जनका पर धटा के अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाए अपने सेवक को नाम सिफाए अपने सेवक की आबद राखे ताकि कदम एक न लाख प्रभु के सेवक को कौन पहुँच है प्रभु के सेवक उच उच है जो प्रभु ने सेवा लाए नानक सो सेवक दैस बिगड़ाए नेकी गिरी मैं कर लाके बसम करे लस कर को लाख है जिसका सास न कट दे आवता को रख दे करात मान जतन करतव पात इसके करतव फिरते जात मारन राखे और न कह सर्व जय कर रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु लख उड़ानी बारंबार बार पर जपी है पी अमृत है मंत्र तरफ है नाम तुम जिन को मुख पाए तो किस और नहीं दृष्टा है नाम तन अमर उपरांग नाम सुकर नाम का संग नाम राजो जंत्र ताने मन तन नाम में नाम समान है उठत बैठ सोत नाम कौन नानक जन के सदकाम बोलो जज भदन दास प्रभु ने जन की नींद दाद करे भगत आत्म कह जाए प्रभु ने सो रह समाए जो हुआ सो जाने प्रभु ने कहो जाने की मैं कौन बखानो तो इसका गुण का एक न जानो वार पर अब सजूर है कौन नानक से जिन पूरे मन मेरे तिनकी ओढ़ ले मन तन अपना तिन जान दे जिन जन अपना प्रभु जाता सुन सर्व तो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दशा पाम डावर सहन सगली छाड़ती जन की सेवा लागे आउन जानो तेरा नानक तिस जान के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाम तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अस्पय सतगुर सिखी करो प्रताप सेवको सदया सिखी गुरु दुरमत मिले रहे गुरु बचनी हर नाम चले सतगुर सिखे बंधन काटे गुरु का सिख करते हटे सतगुर सिखो नाम धंधे गुरु का सिख गुण भागी है सतगुर सिख कल पल सवारे नानक सतगुर सिख जी नाल समारे गुरु के ग्रह से उजो रहे गुरु की अगे मन में सहे आप सुखो कर कृष्ण न्यावे हर हर नाम दे सद्यावे मन बिचे सतगुर के पास ते सेव के कार्य लाल सेवा कर तो नेकामी तिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेव गुरु की मदले बिस विषय गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की का जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाम अनुकवार गुरु को बल जा सरनुदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार में कह अपने कश परम सहन सहन लेन जय नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाई सफल दर्शन बेखत पुनी ते परसद चन कत निर्मली ते भेट संग्राम गुण रवे पार मुखी दर कह गवे गण सुन कर वचन कर रखाने मन संतोख आत्म भयान पूरा गुरु रखे जाका मंत्र अमृत दिस बेके संत गुण बेंद किमत निभाए नानक दिस भाव तिले मिलाए जिस भाए कुसत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक कहूँ बोल न बोझ प्राणी गुम गोचर पर निर्वाणी निरहार निर्भर सुखदाई ताकि विमुख के निर्वाय भगत बंधन के चरण कुम हृदय सुमरे सदबिहारी सदगुरु अपने नानक जिस पर साध है सब रोज अपने ए हर सुभावे जन को अमृत पी अमृत सोए इस पुरख का नाई कदे ना जा के मन पे उठे गुंदा से आठ भैरव का नाम ले सच उपदेश को दे मोह माया के संग न ले मन में रखे हर हर एक अंत कर दीप उपर का से नानक पुरम दूत है तेना से तब तुम्हारे ठंड बरतायठे भाई जन्म मरण के मिटन देश साधु के पूर्ण उपदेश बहुत चूका निर्भय बसे सकल व्याल मन ते खै नसे जिसका सतन कृपा तारी सात संग जब नाम बराई सिद्ध पाए चूके प्रभु गुण सुन नानक हर हर जस सरुण निर्गुण आप सरगुण भी ओहि कला धार जिन सगली मोहि अपने जल बल अपने अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोय सरुण अंत को सोए उत्पोत्र व्यार उपरंग भय प्रकाश साधके संग

सर्व समग्री जा का तन आया अपन जैसे आप सुना अपन जाने खेल बनाया गया कारी की नीम आया सब के माते लिपतो रहे जो कुछ कहने सो आप कहे आज्ञा हो आज्ञा जाए नानक दा भाव तां लै समाए इसते हुए सुनाई बुरा और एक कहो किने कुछ करा भला गुरुदेव कि आप जाने आप जी कि आप साथ सारी साथ साथ हो तो था अपन संग्राज ताकि गत मत कही न जाए दूसर हुए तसो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक के जान जो जाने ते सदा सुख होया मिलाए ले प्रभु सो धनवंत कुलवंत पुतवंत जीवन मुक्ति श्री दे भगवान तन तन तन जिस प्रसाद साहब जगत राया जाने आवन कै सुहाव जन के संगत ते आवे ना वा मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक।

साधना निर्मलता के करम सब ते उचता की शोभा बने नानक गुण नाम सुख मणि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।